0: वोडाफोन मेकअप नाइसा सीमेंट कार्बन निकाले को दिखाने बंग करके कनो ऑर्डर के द फाइव अप यों ते तेरे बुंदारा के तेरे में बुंदारा द रिचार्ज द फोर अप यों द वो बुंदारा द थ्री अप यों द ते बुंदारा के ते में द वो बुंदारा द रिचार्ज और द टू अप यों द वो वो के ते तेरे बुंदारा नो कंटो नो बुंदारा और नेट मनी यू बुकिंग द वो बुंदारा और द तेरे बुंदारा इन अ बेन डाइना द वो न द बंग द नो वन रिचार्ज इन अ बेन डाइना वो वो द बंग द ते बुंदारा और द ते में द वो न रिचार्ज इन अ बेन डाइना यू बुकिंग द वो द बंग और द वो बुंदारा यू बुकिंग द शो द बंग और वाई कर जनरिक अर तेरे बुंदारा और तेरे में बुंदारा द रिचार्ज अरे ना कोना ने बेन डाइना इन अन ते बुंदारा द बंग इरी बो रॉय अति कोना खैले कि नो ये ना निकरिन किम ना द मेकअप बोनांसा
1: Holy pass. Norang gait de gororoi yon te holy pass.
0: Kareki am dada e ke sena. Awa ke tukili ke bona ana. Sin to wana dada bona. Ina run to wana to. Ori an kai. Sta to wana to wana to wana to bok. Ipugini kare nam de gororoi yei. Iri sua ake kona kai reki na kui yei. One home.